0: connect your dream, connect your future, stay connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शुक्ला गण्डकी चार पुरे गौड़ा वा इन डिपार्टमेंट भवन संगे मोबाइल 98 62 32 84 93 र 98 62 38 73

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम।

0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13-424 र 9855-14-175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
1: यति बेला रातिको ठिक 9 बज्यो।